जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।